0: बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत के दुख न दुखी न मरे न जवाइए,
0: संत के दुखी की पूजे न आसा,
1: संत का दुखी उठ चले नरासा,
0: संत के दुख न दृष्टे कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पया कीर्तन।

0: जिस प्रभु अपना कृपा करे
1: सो सेवक किसे डरे
0: जैसा साथ है साथ आया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजिया
1: प्रसाद तात सब भुजिया
0: जब देखो तब सब किस मोल
1: नानक सो सुखम सोई असूल
0: न किस जन्मे न किस मरे
1: अपन चलत आप ही करे
0: आवन जावन दिष्टान दिष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आप सकल में आप
1: अनेक जोग तरह थाप थाप
0: अब नासी नाही।

0: जब आपे आप अपनी जोत तरे
1: तब कवन निधर कवन कत धरे
0: आपन चल दे आप करने हार
1: नानक ठाकर अगम पार
0: अपना शीश के अपने आसन
1: तै जन्म मरण को कहा बनासन
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: तब जमकी त्रास को किस होए
0: जब विगत गोचर प्रवेका
1: तब चित्र गुप्त कुछ पूछत लेखा
0: जब नाथ नरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बादे
0: अपने आप या चर जा
1: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पते होता।

0: पति हारा
1: तै कौन कथे को सुनने हारा
0: वो बेअंत ऊंच ते ऊंचा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा
0: जे आप रचियो पर पंचकार
1: तै गुण में कीनो विसार
0: पाप पुण तै पई कहावत
1: ओ नर को सर्व शालत
0: आज

0: जग मिट कही ना जाए,
1: दूसरा है तसो जी पाए,
0: इसका किया सब परवान,
1: प्रसाद नानक हो जान,
0: जो जाने तिस सदा सुख होए,
1: आप लाए लय प्रभ सोए,
0: ओ तनवंत कुलवंत पतवंत,
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत,
0: तन तन तन जाने आया,
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया।

पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हरगम अगम अपारा, सब त्यावें सब त्यावें तुध जी, हर सच्चे सिरजन सहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसार नहारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंदर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना।

साई जो तो भाव है सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ।

अमर ए दुष्ट सब तुम गावो आप हाद मोहे बचावो सुखी बस मोरो परवारा सेवक सिख सबाए करतारा मोर अच्छा निज कर दय करे है सब बैरन को आ संग रे है पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारी है आप हाद मुझे उबर है मरण काल का त्रास निवर है उजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करे ओ रक्षा राख रे मय राखण हारे साहेब सन सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरहा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को पल मो बद कियो घट घट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचर अस्तुला सपर कृपा दुष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिशन घट घट के पट पट की जन जबद करख करा कर तारा प्रजा तर तब देहे अपारा जब आ करख कर तु हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन सठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही

आए पंथ चलाए तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान कहो नितुटते आए हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरखी देह मोह कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रब ससगुरु जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुरग बास रग बरकरा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ये कथा सुने अरगावै दुख पाप तह निकट न आवै बिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सके न कोई सम्मत सत्रह सहस पछावन हाड़ वधी प्रथम सुखदावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल परी लो लियो सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तर सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साद असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते कहू मांग तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद गहे हम एक ना जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे हो सब तुहे बखान्यो दोहरा

पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सासंतोख विचारो आमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका हुए उदारो ए वस्त जी न जाई नित निद्रा गुरधारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म सारो। श्लोक महला पंजवा तेरा किता जातो नाही मैनू जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुरु सज्जन मिलया नानक नाम मिलैता जीवा तन मन थी वह हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कुएं नाहे उथे तेरी रख अग्नि ओदर माहे सुनके जम के दूत नाहे तेरा छड जाहे भौजल बिखम सगाह गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल में एहो पुन गुण गोविंद गाहे सबसे नु कृपाल संभाले साह साह मिर्था कोई ना जाए जे आवे तो दयाहे। श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जेवा जब गुर नाओ नेत्री सदगुर पेखना श्रवणी सुन्ना गुर नाओ सदगुर सेती रत्या दरगाह पाइये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनु एवा दे जग में उत्तम काढ़ी आए विरले के एके। महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साध जना के संग पव जल तारियन साखत निंदक दुष्ट के माहे बेदारियन ते साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख

नम है, सतगुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है, अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो।

पतवंते प्रभु कौ सिमरह से जन परिवान प्रभु कौ सिमरह से पुरुख प्रधान प्रभु कौ सिमरह से बे मोहताजे प्रभु कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभु कौ सिमरह से सुखवासी प्रभु

ऐसा नाम जप हो मन रंग नानक पाई है साध कै संग जिह मार के गणे जाहे न को सा हर का नाम हा संग तो सा।

बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेहेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय दाखियर

मन कोर, कई कोट पर धर्म को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम वाह, कई कोट प्रदेश पर माह है।

अंत प्रभ के सेवक सगले उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेला कृपाल गुर का शब्द जप पै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करहे बड़भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख कब तुम कर मान जो किथ करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुपाए होए सो होए करने हार पछाणे सोए प्रभ का किया मीठल गाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिह ते उजे तिह माए।

सात मूल सात सात उत्पात सात करनी निर्मल निर्मली जिसे बिजाए तिसे सब भली सतनाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई।

कहो गणी। जब एक कहे हर अगमे पार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहि सुपाहि, तब शिव सकत कहो।

दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय ना सुजाई, जे तस गुण कोय करे। सुनया सतबीर सुरनाथ, सुनया तरत तबल आकाश।

अनभूत अंग अब अंगत मित पार गुणगन उदार मनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत पर चन्मित गत अखंड आल स कर्मा दृश धर्म सर्वा प्रनाढ़ अन्न बाढ़ चाचरी शांत त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंक हरिंद्र नामे अकामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्र भर्ती चतुर्चक्र भर्ती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र गाले चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र माने चतुर्चक्र दाने चाचरी छांदना सत्र न मित्र न भ्रमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे पवित्र प्रतिस अधिस अदृश अग्रस भगवती शांत अथवा प्रसाद कथ दे के आ शुच देस के आ पिछ बेस के आ गंज गर्म के आ पंच भरम के आ पिछ लोके के आ दित सोके के अभूत भरण के विभूत करण के राजंग प्रवाह है के धर्मंग तुजा है के आ शोक भरण के सर्वा अपरण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव अनुप है के आद अदेव के आप अपेव है के चित्रंग विहीन के एक अधिन के रोजी रजा के रही मेरे हाके के पाग ब्याब के गैबल गैब है के अफुल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण करिंद है के रोजी दहंद है के राज करहीम के करमंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देस है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीमे के परमंग फहीम है के आकल अलामे के साहिब कलाम के वजूह है तमाम रजू है मेसुल सलाम है सलीखुत मदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल प्रस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रिजुल निधान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खराज है नृग स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है बेधि अनुभ है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैवल काम है निर्वाह स्वरूप है अगाध है अनुभ है उंगाध रूप है नाश रूप है अनंगी नामे त्रभंगी त्रिकाध त्रिभर्गन त्रिभादे त्रिभर्गन अनंगी नामे त्रभंगी त्रिकामे त्रिभर्गम त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्भागे सुसर्भानुरागे त्रिभुग स्वरूप है शिज है श्रुत है नरकंग प्रणाश है पृथुल प्रवास है नृत प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप है प्रयुक्त सदैव सदा है विभुग स्वरूप प्रयुक्त अनुप है नृक सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक स्वरूप प्रयुक्त अनुप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अपेख है लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है तंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है निचिंत है सुनंत है अलिख है दिख है लेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद तव प्रसाद

जबद कर करा करतारा प्रजा तरतब देहे अपारा जब आ कर करत हो कबहूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन शिष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब हीते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जागो भेवना बाबत भेदा ताको गर्भान अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चीनत न भव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती तुमरा लखा ना जाहे पसारा केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहि भूपा अंड जेर सेत जगीनी उदभुज खान बाव रजदीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो संगरे गैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव्या जुगा स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रण गाथा जे अस्तु तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवय मरे पुरख जमन भग भरे तिहारे तिनके तुम संकट से बिठारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट ने आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट रहे तत्काला कृपा दुष्टन जाहे ने हर हो ताके ताव तनक मैं हर हो रिद सिद्ध कर मोह सब होई दुष्ट छा शबा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे बहरा जिन्नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोख ते रहा खड़केत मैं सरन तिहारी आप हाथ लेह उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेह बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देखो हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्रिय सुजप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन बाजत बल पावै सोई दुख ना दसे बेआपद कोई अड़ल सुने गुंग जो जाहे सुरसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकटना दिन नर के राह हो जो या की एक बार चा भाई को कह चा भाई संबत सतरा सहस पण जाय अर्थ सहस सुन तीन कह जय बहादुर सुधी अस्मी रबारा तीर्थ सदर्भ ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंग तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे अमेक ना जान्यो श्री असबान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब तुए बखान्यो।

मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सुख मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जन गए मन वसया बाजे शब्द घनेरे काहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जनिशा सब पूजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द त्रो प्यार वो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द त कर सभागै शब्द वाजे कला जित।

जन को यही सुहावै, हर जन को यही सुहावै, यही ओनू शोभा दिंदा है। हमेशा मेरे वाहिगुरु जी दे राम दे विच रत्ता रहिंदा है। लोभन मैं लोभी लोभायो, तो हर रंग रचे ज्ञानी, हर जन को यही सुहावै, पेख निकट कर सेवा सतगुर, हर कीर्तन ही त्रिपतावै। फिर कहिंदे अमल स्यो अमली लपटायो, भूमन भूम प्यारी कीर संग बारक है लीना, प्रभु संत ऐसे हितकारी। जेवे अमली अमल विच लपटाए मान जे, जेवे जगीरदार जमीन दे विच लपटाए मान जे, छोटा जा बच्चा जड़ा माता दे दुध विच लपटाए मान, ते जड़ा सेवक है सतनाम श्री वाहिगुरु विच लपटाए मान। कीर संग बारक है लीना, प्रभु संत ऐसे हितकारी, विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे, जैसे रसना साधु लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे। जेवे रसना जबान जेड़ी है बिठे सलोने विच बड़ा आनंद मनदी है, जेवे जबान रसना जेड़ी स्वाद लैंदी है, तेवे सेवक जेड़ा गुरु गुरु जप के स्वाद लैंदा है, आनंद लैंदा है। जैसे रसना साधु लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे, तेवे जेड़ा मेरा वाहिगुरु जी का सेवक है ओ वाहिगुरु जी दे नाम विच रत्ता रहिंदा है। विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे। गरीब निवास सचे पातशाह कहिंदे विद्या वाला विद्या विच है। हटवाणी तन माल हाट कीत, जुआरे जुए माहे चीत, अमली जीवे अमल खाए त्यों हर जन जीवे हर नाम ते आए। जेवे बाणिया अपनी दुकान विच मस्त है, बाणी पुरुष नू दुकान तो बिना काम ही कोई नहीं है। हटवाणी तन माल हाट कीत, जुआरी जुए माहे चीत, ते जुआ खेडन वाला जुए दे विच मस्त है, अमली जीवे अमल खाए त्यों हर जन जीवे हर नाम ते आए। अपने रंग सब को रचे, जित प्रभ लाया तित तित लगे, मेघ समय मोर निरतकार, चंद देख बिगसै को लार, मातक माता बारक देख आनंद, त्यों हर जन जीवे जप गोबिंद। जदों बदल आउंदे ने, जदों बदल आउंदे ने, मोर नू कहना नहीं पैंदा भी तू पैल पा, ओनू कहना नहीं पैंदा भी तू नच आनंद लै, पर जदों गुरु दा शब्द रूपी नाम रूपी मीह पैंदा, बदल आउंदे ने, कथा कीर्तन दा प्रवाह चलदा जे, ते गुरु दा सिख फिर जिवें मोर बदलां नू वेख के आनंद माणदा, तिवें आनंद विच हो जांदा। जिवें चंद्रमा चढ़दा जे, कोयल जिहड़ी है चकोर चकोर जिहड़ी है उहदे वल्ले इक टक वेख के आनंद माणदी, जिहनूं भाई साहिब जी कहिंदे चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले, चकवी सूरज हेत है मिल होण सुखाले, निहो कवल कल जाणीए खिण मूह वेखाले, मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले, नार पतार प्यार है मां पुत संभाले, पीर मुरीदा पिर हड़ीओ निभै नाले। चंद देख बिकसै कौलार, त्यों हर जन को हर नाम आधार, जैसे माता बारक देख आनंद, कहिंदे आनंद प्राप्त हो जांदा है। सिंह रुचै सद भोजन मास, रन देख सूरे चित उलास, त्यों हर जन को हर नाम आधार। तेवें जिहड़ा हरि दा सेवक है ओनू नाम दा आसरा आ जांदा है, पर सेवक बनन वास्ते घलना घलनी पैंदी है। कबीर रोड़ा होय रहो बाटका, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है जो धरनी में खे, कबीर खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। हरिदा सेवक इयों दा हो जांदा, कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए, जैसा हार ही होए हरी दे वर्गा ही हो जांदा। उस सेवक दी ओड़क प्रीत निभ जांदी है, ओनू गरीब निवास जी कहिंदे सेवक की ओड़क निभही प्रीत, जीवत सैब सेवियो अपना चलते राखियो,
चीत जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मोख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो गृह भीतर, उठ उआहो कौ दौरियो, आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जान्यो, जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले मान्यो, भयो कृपाल भयो कृपाल सेवक कौ, भयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ, सवरे हलत पलाता धन सेवक सफल ओह आया, जन नानक खासम पछाता। ये है हर जन हरिदा सेवक, राम नाम गुण गावे, जो रमिया होया राम है उदा जड़ा नाम है, गुण है खूबी मेरे वाहिगुरु जी दी वड्याई, वो हमेशा वड्याईया करदा है, किवें करदा है, राजन मैं तू राजा कही है, ये वड्याई है, भूमण मैं भूमा, ठाकुर मैं ठकुराई तेरी, कोमण सिर कोमा, पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कवन करीजै करते पेख रहे विस्मय वड्याई है, सुखियन मैं सुखिया तू कही है, दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी तेरी, रसियन मैं राता, सूरन मैं तू सूरा कही है, भोगन मैं भोगी, गृहस्थन मैं तू बड़ो गृहस्थी, जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कही है, चारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा, वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा, शरण पालन टीका लक्ष्मी के तक गणी न जाइए, गण ना सको सीकै मेरे वाहिगुरु जी दी वड्याई है, कागत दीप सबै कर कह यार सात समुद्रन की मस कह हो, काट बनस्पति सगरी लिखबे हो के लेखन काज बने हो, कहिंदे सारी बनस्पति कलमा बन जान, सारे दीप शाही बन जान, सारी धरती कागज बन जान, पर वड्याई नहीं मुकदी, तेवे जड़ा सेवक है दिन रात मेरे वाहिगुरु निरंकार जी की वड्याई करदा, उहदे गुणा

वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुगतिया

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह